समंदर की ढेर, दे दे नीम दीवाने सारी भस्मंदर की ढेरी, संचय संचन देख अंध जाने सब मेरी। कहरिया नीहा पुट के उन्हां दे उपर दुवारा उसार दे, महल बनांदे, संचदा धन दौलत इकट्ठा करदा, कहिंदा सारा कुछ मेरा ही है, संचय संचन देई किसे अंध जाने सब मेरी।

सब रास पिते की मारे आप जीवाले। बस ऐसा निरंकार जिस दे हाथ में कला है। कला उपाय गौड़ी महला तीजा। साहब गुरु अमरदास, कला उपाय तरी जन धरती जल अग्नि का बंद किए। ऐसी कमाल की गल, ऐसी ताकत। कला उपाय तरी जन धरती जल अग्नि का बंद किया, अंधले दैसर मूंड कटाया, रावण मार क्या बड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, कहते ते उपमा तेरी कुछ नहीं, घाटी बनी। तू ते धरती नू अपने तुहे दे अंदर बन लिया। केड़ी चीज ऐसी है धरती दे थले जिस नू टिकाया होया ते धरती उत्ते टिकी। कला उपाय धरी जन धरती जल अग्नि का बंद किया, जल ते अग पानी दे विच अग्नि। कमाल दी गल है, पर ए पानी उन्ना चिर साड़ता नहीं मनुख नू। मनुख पानी विच रहिंदा है, पानी पींदा है, पर अंदर ते अग नहीं लगदी। जे इस नू जतन कीता जांदा है, इस दे यतन करन दे नाल पानी चो ही अग अलग कर दित्ती जांदी। लकड़ विच अग है, लकड़ सड़दी नहीं। लकड़ विच अग है, लकड़ नहीं सड़दी। ते जे लकड़ नू सुका लिया जावे, बाहरों अग लाई जावे, अंदरली अग भड़क उठदी, अग लग जांदी। मिट्टी च अग है, आकाश विच अग है, ये सारे दे सारे तत् जड़े ने मिले जुले हैं। शरीर दे अंदर पानी है, विचे धरती विचे पानी, विच कास्त अगन तरीजै, बकरी सिंह इकत्ता थाए रख है, मन हर जप भरम भव दूर कीजै। हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान दिवाए। ऐसा सतगुरु है जेड़ा निमाणिया नु मान दवांदा है। फिर मारे करिए की, कहंदे खसमै भावे ओहा चंगा जे करे खुदाए। जेड़ा रब रब करेगा वो ही चंगा है। धन दौलत का मानता नहीं, उत्थे उत्थे तेरी प्रॉपर्टी वेखनी ही नहीं, किसी ने पटे वेखने ही नहीं, सारे का सारा कैंसल हो जाना। उत्थे तां खुदा खुदा दी वारी है, जिन्हें अल्लाह अल्लाह राम राम वाहगुरु वाहगुरु जिन्हें रचना दे नाल जपिया, उन्हां नूं फिर आदर ते सत्कार दे नाल बुलाया जाएगा। ते जिन्हां ने नाम जपिया उन्हां दा जीवन अमृतमयी हो जाता, मिठा। बाबा दर्शन सिंह जी अमृतसर साहब दे विच सतगुरु साहब कार सेवा वाले, कैसा जीवन है। जीवन दा देखो सिख्या लैनी होवे ते बड़ी जगह तो लई। दो घटनावां सामने आईयां पिछे जी। बाबा दर्शन सिंह हरां दे डेरे दे विच चोरी हो गई। कार सेवा वाले महापुरख, उन्हां दे डेरे विच चोरी हो गई। भांडे भूंडे चुक लै गए, लंगर चो भांडे जिहड़े सन सारे साफ करते लै गए चुक के। जिहड़े सेवक सन उन्हां नूं पता लग गया वी चोरी फलाने इंसान ने कीती। दूजा दिन होया, बाबा दर्शन सिंह जी बैठे, कहिंदे महापुरखो चोर दा पता लग गया। कहिंदे अच्छा, कहिंदे लियाइए बन के महाराज उन्हू जां पुलिस दे हवाले कर दईए। बाबा दर्शन सिंह कहिंदे कहिंदे नहीं, आओ अरदास करने आ। की नाम है जिन्हें चोरी कीती है? ना दस्सिया। महापुरख कहिंदे मैनू ना दसो कौन है जिन्हें चोरी कीती। अरदास करने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे सन्मुख। सारे सिंह खड़े हो गए, कहने लगे वाकई लोग दूजे भी इकट्ठे हो गए, इस बंदे नूं सजा मिलनी चाहीदी है। चलो महापुरख अरदास करनगे, बेड़ा गर्क हो ही जाएगा अपने आप। महापुरख अरदास करन लगे ने, इस मनुख नूं ते भुगतनी पएगी ना। बाबा दर्शन सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सन्मुख आके हथ जोड़ के अरदास करन लगे। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, श्री गुरु रामदास महाराज पातशाह, आ जिहड़ा सिख कल आया ना तेरे लंगर दे विचों बर्तन लै गए, बहुत कुछ चुक के लै गए। सतगुरु गुरु रामदास महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, वो सिख बड़ा गरीब है, वो उधारे लैके गया तेरे कोलों। आप जी दे दरबार विचों उधारे लैके गया, महाराज कृपा करो, इन्ना बल बख्शो।

न ताको कोई दात मातंग न पायंग न पुत्रंग न पुत्रंग न दाया न दायंग न नेहं न गेहं न सैनं न सासं न नेहं न गेहं न सैनं

डूबियले मान एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलया रहो ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक दिन की शरणा जिन तू नाही विसरया आस्था महला पंजवा पई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत पज केवल नाम सरंजा मिलाग पव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै राउ जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साध न जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो ब्रत पारा हमरे दोष्ट सब तुम काव हो आप हाथ दै मोहे बचाव।

आज संग रहे हैं। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सुतम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उभरे आए, मरण काल का त्रास निवरे आए। हू जो सदा हमारे पछा, सरी अस्तु करे हो रक्षा। राख ले हो मोहिरा कनारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए सब जुग अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दांत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझे हमारा। नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सतरन को बल मोह बद कियो। कड़ कड़ गए अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृढ़ कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, कड़ कड़ के पट पट की जानै। जब उद करख करा कर दारा, प्रजा धरत तब देही अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझो चारे। तुम सब ही तेरे निरालम, जानत भेद भेद अरयालम। निरंकार निर्भकार निरलंब, आद अनिल

देती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहीं भूपा। अंडज जे रजसे तिज किनी, उतपुज खान बहोर रच दीनी। कहूं फूल राजा हब बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबा

दुख तब मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं।

धन कमो हरे हो रिद सिद करमो सब होई दुष्ट शास्व सक न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल भास दे ताई उबारा जिन नर नाम तिहार कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैले उबारी सर्ब ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लेह बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहें हम एक न जाने ओ सरी असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे सब तो बखाने दोहरा सगल

सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बणाइयां शब्दो तां गावो हरि के राम मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किस है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां है बड़ियाइयां कह नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सभा गए कर सभा गए शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया

अनहदवाजी अनद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर दया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो जे को खावे जे को पुंचै जिसका होए उधारो एह वास्तव तजी नह जाई नित नित रख वरधारो तम संसार चरण लग तरी सब न

आत्मजिन सकल वसुताक जाका सतगुर पूरा जाका हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा।

जन के चरण बसै मेरा ही हर संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुखेही जन के चरण बसै मेरा ही हर संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुखेही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। ओ सोहिला रा गौरी जी की महला पहला एक ओंकार श्री गुरु प्रसाद। जय कार कीर्ता किय करते कहो विचार उदित कर गावो सोहिला सिवरे सजनहार। तुम गावो मेरे निरभउ का सोहिला हूँ वारी जत सोहिला है सदा सुख होय राउ नित नित जीअड़े संभाली आन देखेगा देवनहार। तेरा दान कीमत ना पवै तिसदा ते गवन समारू संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजन असी सड़िया ज होवै साहब समेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरी है नानक से दे अवन राग आसा महला पहला। छे कार छे गुर छे उपदेश गुर गुरे कोवे सनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कार राख बढ़ाई तोय रहाउ। विश्व जसियां कड़ियां पहरा थिती वारी माह हुआ सूरज कुर तने सौ नानक करते के किते वे सौ राग तनासरी महला पहला। गगन मै थाल रब चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल यान लो पवन चवरो परे सगल बंदराई फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी राहो सहस तब नैन नन नैन है तोय गौ सहस मूर्त ननायक तोही सहस पद बिमल नानेक पद गंध बैन सहस तब गंध विचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिसदा चानण सब मैं चानण होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सुभावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो आन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिं कौ होए जाते तेरा नाए वासारा गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर व परया मिल साधु खंडल खंडाहे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लेव मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पुन वडाहे कार डंडाओ तो पुन वडाहे रहाओ सागत हर साध न जानिया तने अंतर हो मैं कंडाहे। ज्यो ज्यो चल है चुभ दुख पाव है जम काल सहे सिर डंडाही हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण पव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही।

सरदार जस्सा सिंह दे वारी वारी कहण दे उत्ते बाबा जी ने कहा, सरदार जी मैं मेरे नाल बीती सारी दस सकदे ते पर सिंघां नूं प्रशादा छक लैण दे बाद विच दसूंगा। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया दी अखां दे विच खून आ गया। सरदार ने कहा, बाबा जी तू सिंघां दा सेवादार बाबा, किसे दुख दे विच होवें तैनू कोई दुख होवे ते धन गुरु श्री गुरु कलगियां वाले दा खालसा प्रशादे छक लवे। उधरों सिंह प्रशादा छकण दी बिलकुल तैयारी दे विच सरदार बहादुर सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िए ने ललकार के सिंघां नूं कहा, सिंघो जिन्ना चिर बाबा जी हड वीती नहीं दसदे उन्ना चिर किसे ने मूंह दे विच इक बुरकी भी नहीं पाउणी। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया सारे जत्थे नूं ललकार के इउं कह रहा, बई

0: केलबोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
4: Dasmesh Pita de parivar vichode pichon unna da rasoiya Gangu chote sahibzadeyan ate mata Gujri nu apne pind Khedi le gaya. Dhan de laalch vich aake ate sariyan wafadariyan bhula ke dadi pote giraftar karwa de. ਉਸ ਦਿਲ ਹਲੂਣ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।

0: बड़े प्यारे संत पुनर को पास पूर्णिमा की जय मिले जी कहो नानक की अरदास। परम सत्कार योग सतगुरां दे साजी ते नवाजी होई गुरु प्यारे गुरु सवारी गुरु खालसा साहब संगत जी वाहिगुरु जी का
1: खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
0: सतगुरां ने अपनी रहमत दे खजाने दे विचों साडे ते भरपूर कृपा कीती है, महान कृपा कीती है, जो सानू चार दिन मिलके बैठण दा सुभाग प्राप्त होया। कीर्तन सुनिया पर नहीं, असी जाना है हर रोज कोई राजी आवे कोई ढाडी आवे कोई संत आवे नाम ही आवे सतगुरु के गुरुद्वारे ने ना सतनाम महाराज जी के गुरुद्वारे ने महीने मसिया ही नहीं, हर रोज जाना सतगुरु रोज साढ़े को हर रोज सुभा बनाना है कि महाराज जी के आप रोज दर्शन करने। सो सात संगत जी साढ़े से सारे महाराज जी ने कृपा की है ते सानू सारिया मिल के बैठन का सुभाग प्राप्त होया। तो मैं अज बेनती कर रहा संत हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना। हुण मैं ये धारणा महापुरखां दे प्यार विच क्योंकि बाबा जी ने बेनती आप जी कर रहे थे जिन्हों को जीवन मिलया होवे वो भलाया ते भी
2: नहीं भूलते
0: नहीं भूल सकते। तो अज संत बाबा करम सिंह महाराज जी जिन्हों पूरे अज पांच साल हो गए शरीर छड्डे अज उन्हां दी बरसी है। महापुरखा ने अज वाले दिन शरीर छड्डे अज तो कोई 8-9 साल पहला उन्हां दी संगत प्राप्त हुई थी और लगातार 3-4 साल उन्हां दे दर्शन दीदार होंदे रहे संगत प्राप्त होंदी रही उन्हां दे चरणां विच रह के सतगुरां दे चरणां नाल जुड़न दा सुभाग प्राप्त होया। उन्हां ने जात दसी जुगतियां दसियां महाराज जी सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे नाल जुड़िया जोड़न वाले महापुरख हैं जोड़न हारो संत। हाँ विचोले की लोड़ है कोल कमाई तो मित्र विचोले जय मेले कंत पछाणा विचोला विच ओला विचोला जेड़ा विकला ओला चुक दे दे आखो सतना
1: वाहेगुरु
0: विच ओला जेड़ा ओला रख जावे वो माड़ा काम है। कई ओला रख जांदे ने जिहड़े ओला रख जांदे ने सारी जिंदगी जुतियां भी उन्हां नूं खाणियां पैंदियां जब माड़ा जिहा घर च कलेश पैंदा ते गालां विचोले नहीं पैंदियां पर जिहड़ा सात संगत जी विचला ओला चुक दे दे उहदा सत्कार है जिहने सच दस्सिया। महापुरख साधु बड़े ने ऐसी गल कोई नहीं पर गुरमुख हो बड़े मिल जाणगे धागे कवीतां वहमां भरमां कर्मकांडां नाल जोड़न वाले पर महापुरखां दे चरणां विच गया सी ना मैं जदों उन्हां ने जाण सारे ही आख्या कि भाई सारा परिवार पहला खंडे पाटेगा अमृत ते मुढ़ला फर्क। सब तो पहला महापुरखां ने खंडे बट दा अमृत छकाया ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे नाल जोड़न दा राह विखाता कृपा कीती। तो सात संगत जी बख्शिशां कीतियां बड़ियां रहमतां कीतियां बहुत प्यार दिता माता पिता का भी प्यार है रिश्तेदारां का भी प्यार है सब विच मतलब है। माता पिता का प्यार भी मतलब ही हुंदा है उहदे विच भी कोई ना कोई मतलब छुपिया होया क्योंकि माता पिता ने परवरिश करनी है तेनू संभालना है वड्डा हो के सानू संभालेगा। माता पिता सत्कार देंदे ने तनखा उन्हां दे हाथ ते रखदे बड़ा सत्कार बड़ा मान आदर दो बच्चे ने इको मां दी कुख तो जन्म लिया है एक 10,000 लिया रहा है एक कुछ भी नहीं करता जिहड़ा 10,000 लियाओगे लियाएगा उहदा सत्कार है ते जिहड़ा कम कोई नहीं करता माता पिता वल्लों उहनू सत्कार है। ਝਿੜਕਾਂ ਹੀ ਝਿੜਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿਸਿਆ ਪਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਘਰ ਬਾਰ ਲੁਟਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰ ਲੋੜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈ ਪਰ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪ੍ਰਮਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ

गुर के शब्द विचार अमृत वेले बोले अब बिहार अमृत वेले बोले अब बिहार अमृत वेले।

मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुरु मिले अंधेरा जाई नानक हूं मैं मेट समाई सुन निरंतर दीजे बंद उड़े ना हंसा पड़े ना कंध सहज गुफा कर जाने साचा नानक साचे पावे साचा किस कारण ग्रह तजियो उदासी किस कारण एहो भेख नवासी किस वखर के तुम बन जारे क्यों कर साथ लंघावो पारी गुरमुख खोजत भये उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी साच वखर के हम बन जारी नानक गुरमुख उतर सपारी चित बिद पुरखा जन्म बटाया काहे को तुझ एहो मन लाया कित बिद्यासा मनसा खाई कित बिद जोत निरंतर पाई बिन दंता क्यों खाइए सार नानक साचा करो विचार सतगुर कै जन्मे गमन मटाया अनहत राती एहो मन लाया मनसाया सा शब्द जलाई गुरमुख जोत निरंतर पाई त्रै गुण मेटे खाइए सार नानक तारे तारन हार आद को कवन विचार कथियले सुन कहां घर वासो ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले घट घट कवन निवासो काल का ठींगा क्यों जलाइयले क्यों निरभउ घर जाइए सहज संतोख का आसन जाने क्यों छेदे बहराइए गुर कै शब्द हों मैं बिख मारे ता निज कर होए वासो जिन रच रचिया तिस शब्द पछाणे नानक ताका दासु कहां ते आवे कहां एहो जावे कहां एहो रहे समाई एस शब्द को जो अर्थावे तिस गुर तिल ना कमाई क्यों तत्तै अवगत्तै पावे गुरमुख लगे प्यारू

अवै गत मित शब्दे पाई आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंदरा गुर ज्ञान विचारियले कट कट साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाई है तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार ना करनी सेवै सिख सो खोज लह हुक्म बिस्माद हुक्म पछाण जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवै अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाई है साचै शब्द समाए लिया एक एक ओ सच एका जाने हो मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाण अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब किश सूजे अंतर जाने सर्ब दया नानक ता को मिले वडाई आप पछाणे सर्ब जिया साचो उपजे साच सुमावे साचे सूचे एक मया झूठे आवे ठवर ना पावे दूजे आवा गौण भया आवा गौण मिटे गुर शब्दी आपे परखे बख्श लया एका बेदन दूजे व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूझे जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तार नहारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख भूले जम की कान पर कर जो है हाने हान मनमुख भरम पवै बेबान वे मार्ग मूसे मंत्र मसान शब्द ना चीने लवे कुबान नानक साच रते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावे गुरमुख बाणी अकाड़ कढ़ावे गुरमुख निर्मल हर

गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख परचै वेद बीचारी, गुरमुख परचै परिय तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर भिद जानी, गुरमुख पाई अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बीचार, गुरमुख निबह सब परवार, गुरमुख जपिए अंतर प्यार, गुरमुख पाइए शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक हों मैं जाल समाई, गुरमुख धरती साचै साजी, तिसमह उपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाई, साच रतो पत स्यों घर जाय, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि, गुरमुख सारे अपसर बिद जानै, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै, गुरमुख तारी पार उतारी, नानक गुरमुख शब्द निस्तारी।

तुम बाले एस कथा का दे विचार पवजल शब्द लंगावन हार पवन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत धुन चेला कथ कथा ले रहो निराला नानक जुग जुग गुरु गोपाला एक शब्द जित कथा विचारी गुरमुख हो मैं अग्न निवारी मैन के दंत क्यों खाई है सार जित गर्भ जाए सो कवन आहार हिवै का घर मंदर अग्न पिराहन कमन गुफा जित रह अवाहन इत उत किस को जान समावे कमन ध्यान मन मनह समावे हौ हौ मैं विचो खोवे दूजा मेट एको होवे जग करड़ा मनमुख गावार शब्द कमाइए खाइए सार अंतर बाहर एको जाने नानक अग्न मरे सतगुर कै पाने सच भै राता गर्भ निवारे एको जाता शब्द विचारे शब्द वसै सच अंतर ही आ तन मन सीतल रंग रंगिया काम क्रोध बेखे अग्न निवारी नानक नजरी नजर प्यारी कवन मुख चंद हिवै घर छाया कवन मुख सूरज तपै तपाया कवन मुख काल जोहत नित रहै कवन बुद्ध गुरमुख पात रहै कवन जोध जो काल संघारै बोलै बाणी नानक बीचारै शब्द भाखत सस जोत अपारा सस कर सूर वसै मिटै अंधियारा सुख दुख सम कर नाम आधारा आपे पार उतारन हारा गुर पर चै मन सा

संतापे तत्तो तत मिले मन माने दूजा जाए इकत घर आने बोले पवना गगन गरजे नानक निश्चल मिलन सहजे अंतर सुनन बाहर सुनन त्रिभुवन सुन मुसुनन चौथे सुनने जो नर जाने ताको पाप ना पुनन घट घट सुन का जाने पेव आद पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रति से कैसी जित ते उपजे तिस ही जैसी कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवै पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचै राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाए मिलिए सुख होए गुरमुख जागै नींद ना सोए सुन शब्द अपरंपर तारै कहते मुक्त शब्द निस्तारै गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गुआए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तथाई क्यों तत न बूझे चोटा खाए जम दरबादे कोई न राखे बिन शब्द ना ही पत साखे क्यों कर बूझे पावे पार नानक मनमुख ना बूझे गवार कबुद्ध मिटे गुर शब्द बीचार सतगुर भेटे मुख द्वार तत ना चीने मनमुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए माने हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावे मान साच वखर धन पल्ले होए आप तरे तारे पीस होए सहज रत्ता बूझे पत होए ताकी कीमत करे ना कोई जह देखा तह रहे आसमाई नानक पार परे सच पाई सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है तिस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर लख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाई सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसै विचो भरम गवाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाई शब्द गुरु भव सागर तरिए इत उत एको जाने चेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाने त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोले तत बिरोले चीने अलख अपारू त्रै गुण मेटे शब्द वसाई ता मन चूकै अहंकारू अंतर बाहर एको जाने ता हर नाम लगे प्यारू सुखमना इड़ा पिंगला बूझे जाया पे लख लखाए नानक तिहों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द सुमाई मन का जियो पवन कथियले पवन कहां रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस ना आवे औदू हउमै प्यास ना जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमन बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन तृप्तास है
नानक दुख सुख सम कर जापै, सतगुर ते काल ना ग्रासै, रंग ना राता रस नहीं माता, बिन गुर शब्द है जल बल ताता, बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया, पवन ना साध्या सच ना अराध्या, कथ कथा ले सम कर रह, तो नानक आत्म राम कौल है।

ते सब प्रगट होवे नामे सोजी पाई बिन नावे भेख करह बहु तेरे सच्चे आप खुआई सतगुर ते नाम

अंध कमाई जो देवै तिसै ना जानी दिते कौ लपटाई नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर ना करना।

अंतर निर्मल होय, अज्ञान का भ्रम कटिए ज्ञान प्राप्त होय। नानक एको नदरी आया, जह देखा तह सोई। पौड़ी सच्चा तख्त रचाया, बैसन को जाई। सब किसे आपे आप है, गुर शब्द सुनाई। आपे कुदरत साजियन, कर महल सराई। चांद सूरज दोए चानने, पूरी बणत बनाई। आपे वेखै सुने आप, गुर शब्द त्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। रहाऊ सलोक कबीर महदी कर कै कालिया, आप पिसाए पिसाई। ऐसह बात ना पुछिया, कबहू ना लाई पाए। महला तीजा नानक महदी कर कै रखिया, सो सहो नदर करी। आपे पीसै आपे कसै, आपे ही लाए ले। यो पिरम प्याला खसम का, जय पावै तै दे। पौड़ी वेकी सिष्ट उपायन, सब हुक्म आवै जाए समाई। आपे वेख विग सदा, दूजा को नाही। ज्यों पावै त्यों रख तू, गुर शब्द बुझाई। सबना तेरा जोर है, ज्यों भावै तिवै चलाही। तुद जेवड़ मैं नाही को, किस आख सुनाई। श्लोक महला तीजा, परम भलाई सब जग फिरी। हावी होई भाल, सो सहु शांत ना देवई। क्या चलै तिस नाल, गुर प्रसादी हर त्याई है। अंतर रखिए उर धार, नानक घर बैठिया सहो पाया। जा कृपा कीती करतार, महला तीजा। धंधा धावत दिन गया, रहण गवाई सोए। कूड़ बोल बिख खाया, मनमुख चलिया रोए। सिरै उपर जम डांड है, दूजै भाई पत खोए। हर नाम कदे ना चेत्यो, फिर आवन जाना होए। गुर प्रसादी हर मन वसै, जम डांड ना लागै कोए। नानक सहजे मिल रहै, कर्म प्राप्त होए। पौड़ी एक अपनी सिफती लायन, दे सतगुर मती। एक नानू नाऊ बख्शियन, अस्थिर हर सती। पौन पानी बै संतरो, हुक्म करह भगती। इना नो पौ अगला, पूरी बणत बणती। सब इको हुक्म वरतदा, मने सुख पाई। सलोक कबीर कसौटी राम की, झूठा टिकै ना कोई। राम कसौटी सो सहै, जो मर जीवा होए। महला तीजा, क्यों कर इहो मन मारिय, क्यों कर मृतक होए। कहिया शब्द ना मानी, हउ मैं छड्डै ना कोई। गुर प्रसादी हउ मैं छुट्टै, जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै, तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा, जीवत मरना सब को कहै, जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे, दारू भाउ लाए। अन दिन गुण गावै सुख सहजी, बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाई।

ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझ बिचारा सब किस तेरा खेल है सच सिरजन हारा जिस भावै तिस बख्श लै सच शब्द समाई श्लोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावै माया नू फिरे तपा सदावै परमे भूला सब तीर्थ गह ओ तपा कैसे परम गत लह गुर प्रसादी को सच कमावै नानक सो तपा मूखंतर पावै महला तीजा सो तपा जे एहो तप काले सतगुरु नो मिले शब्द संभाले सतगुरु की सेवा एहो तप परवान नानक सो तपा दरगह पावै मान पौड़ी रात दिन स उपायन संसार की वर्तन गुरमति घट चानना अनेर बनासन हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब वन त्रिन सब किसे आपे आप है गुरमुख सदा हर भन शब्दे ही सोजी पई सच्चा आप बुझाई श्लोक महला तीजा अभ्यागत ना आखियन जिनके चित में भरम तिस दै दित नानका ते हो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद ताका भूखा होय तिसका भोजन नानका विरला पाए कोई महला तीजा अभ्यागत एह ना आखियन जे पर कर भोजन करेन उदरै कारण अपने बहले भेख करेन अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सहो अपना निज कार रहन करेन पौड़ी अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराऊ घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाऊ सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाऊ सच्चा आप तखत सच्चा वह सच्चा करे नियाऊ सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई श्लोक महला तीजा रहनायर माहे अनंत है कूड़ी आवे जाई भाणे चले अपने बहुती लह सजाई रहनायर मह सब किश है करमी पल्ले पाई नानक नौ निद पाई है जे चले तिसे रजाई महला तीजा सहजे सतगुर ना सेवेओ विच हों मैं जन्म बनास रसना हर रसना चखियो कमल ना होयो परगास बिख खादी मन मुख मोआ माया मोहे विनास एक सहर के ना

ताय अन दिन सेवा करे सतगुरु की कबह न छोड़े पास। ज्यों जल में कमल अलिप तो वरतै त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको ज्यो भावै त्यों हर गुणतास। पौड़ी छत्ती जोग गबाल सा आपे गणत कीनी आपे श्रेष्ठ सब साजियन। आप मत दीनी सिमरत सास्त साजियन पाप पुन गणत गणीनी। जिस बजाए सो बुझसी।

सब रत है, रत बिन तन ना होई। जो सह रती अपनी तिन तन लोभ रत ना होई। पै पै तन खीन होए लोभ रत विचों जाए। ज्यों बैसंतर धात सुध होए त्यों हर का पौ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहनी जो रते हर रंग लाए महला तीजा। राम कली राम मन वसिया ता बनिया शिंगार। गुर कै शब्द कमल बिगसिया ता सौंपिया भगत भंडार। भरम गया ता जागिया चूका अज्ञान अंधार।

मनमुख सिंगार ना जाननी, जासन जन्म सबहार, बिन हर भगती सिंगार करह, नित जम्मह हुए खुआर, सह सारे विच सोभ ना पाइनी, अग्गै जी करी सो जाने करतार, नानक सच्चा एक है।

Ade Nila Nade Nade Jug Jug Eko Vesa Ek Duji Pa Lakho Vain Lakho Vain Lakho Vesa Lakh Lakh Gira Akiyan Ek Naam Jagdisa Itraha Pat Pabdiyan Chadiya Hoi Akisa Son Galna Akash Kien Kita Yai Risa Nanak Nadri Paiya Kudi Kuda Thes Akhan Jor Chupena Jor Jor Ramangan Dedna Jor Jorna Jeevan Marna Na Jor Jorna Rajmal Manasor Jorna Surti Gyan Vichar Jorna Jyoti Shuta Sansar Jis Hath Jor Kar Vekha Soe Nanak Uttam Nijna Koe Rati Ruti Thiti Var Pavan Pani Agni Patal Tais Vich Dharti Thap Rakhi Dharmasal तैस वैच जी जोद के रंग दिन के नाम नेक अनंत गर्मी गर्मी होई विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पांच प्रवान नदरी कर्म पवै निशान गज बगाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का हो धर्म ज्ञान खंड का को कर्म गेते पवन पाणी वसंतर गेते कान महेश गेते वर्म काट घड़िया रूप रंग के वेश खेतियां कर्म भूमि मेर गेते गेते तू उपदेश गेते अंत जन सूर गेते गेते मन देवी वेश गेते देवदान मन केते गेते रतन समंद केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरेंद केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथ नाद विनोद कोड आनंद जन्म खंड की बाणी रूप तिथ काट घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथ घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथ घड़िया सुरस दंकी शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथ और न कोई होर तिथ जोध महाबल सूर तन मह राम रहया भरपूर जिथे सीतो सीता मह माए दग रूप न कथने जाए ना हो मरहे न ठग जाए जिनके राम वसै मन माई तिथे भगत वसै के लोक रह आनंद सच मन सोए सचखंड वसै निरंकार वर्कर वेख नजर निहाल तिथा खंड मंडल वर पांड जी को कथा दंत न अंत तिथा लो लो आकार जब जब हुक्म तिव तिव कार विख विकस कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात बहारा तीर जसन यार अहरण मत भेद हथियार पाओ फला अगन तब ताओ पांडा पाओ अमृत ते तटाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिताल माता दरत महात दिवस रात दुदाई दाया खेल सगल जागत चंगियाइया बुरियाइया व चैत्र महादूर करमी आपो अपनी के निड़ के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्हें नाम ते आया गए मुसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ओम जाप साहिब एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुखवाक पातशाह दसवीं शबद छंद दग प्रसाद चक्कर चिह नर बरंजा त्यार पात नहंगे रूप रंग अर देख पेख को कह न सकत के अचल मूर्तन पव प्रकाश मितुज कह जय कोट इंद्र निराण सा शान गणे जय त्रे पवन महीप सुर नारिया सुर नेत नेत बण त्रण कह तू तव सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्ण तु समत भुजंग प्रयात छंद नमस्तवंगा काले नमस्तवंगर पाले नमस्तंगा रूपे नमस्तंगा नूपे नमस्तंगा पेखे नमस्तंगा लेखे नमस्तंगा काये नमस्तंगा जाये नमस्तंगा गंजे नमस्तंगा पंजे नमस्तंगा नामे नमस्तंगा ठामे नमस्तंगा कर्मंग नमस्तंगा धर्मंग नमस्तंगा नामंग नमस्तंगा धामंग नमस्तंगा जीते नमस्तंगा जीते नमस्तंगा बीते नमस्तंगा बाहे नमस्तंगा टाहे नमस्तंगा नीले नमस्तंगा नादे नमस्तंगा शेदे नमस्तंगा गादे नमस्तंगा गंजे नमस्तंगा पंजे नमस्तंगा उदारी नमस्तंगा पारे
නමස්තං සෝයිකනවතං අනේකනවතං පුතේනවතං අජුපේනවතං නරකර්මේනවතං නරපර්මේනවතං නරදේශේනවතං නරපේසේනවතං නරනාමේනවතං නරකාමේනවතං නරදාතේනවතං නරකාතේ නමස්තං නරතුතේනමස්තං පුතේනමස්තං ලෝකේනමස්තං අශෝකේනමස්තං නරතාපේනමස්තං අසාපේනමස්තං ධර්මානේනමස්තං නදානේනමස්තං අගාහේනමස්තං බාහේනමස්තං ධර්මර්ගේනමස්තං සර්ගේ නමස්තං ප්‍රභෝගේනමස්තං සජෝගේනමස්තං රංගේනමස්තං පංගේනමස්තං ගම්මේනමස්තස්තරම්මේනමස්තං ජලාසරේනමස්තං නරාසරේනමස්තං ජාතේනමස්තං පාතේනමස්තං මජ්ජේනමස්තස්තජබේ ආදේශං ආදේශේන මාතං අපේසේන මාතං නරතාමේන මාතං නරබාමේ නමෝ සර්වකාලේ නමෝ සර්වදයාලේ නමෝ සර්වරූපේ නමෝ සර්වභූපේ නමෝ සර්වඛාපේ නමෝ සර්වතාපේ නමෝ සර්වකාලේ නමෝ සර්වපාලේ නමස්තස්තු දේවාය නමස්තං අපේවාය නමස්තං ආජනමේ නමස්තං සුබනමේ නමෝ සර්වගෞණේ නමෝ සර්වපෞණේ යන නමෝ සර්වරංගේ දර්භංගේ නමෝ සර්වරංගේ නමෝ සර්වභංගේ නමෝ කාලකාලේ නමස්තස් දයාලේ නමස්තං වර්ණේ නමස්තං වර්ණේ නමස්තං ජරාරං නමස්තං කරතාරං නමෝ සර්වතන්දේ නමෝ වස්තබන්දේ නමස්තං නරසාකේ නමස්තං නරභාකේ නමස්තං රහීමේ නමස්තං කරීමේ නමස්තං අනන්තේ නමස්තං මහන්තේ නමස්තස් රාගේ නමස්තං සුභාගේ නමෝ සර්ව සෝඛං නමෝ සර්ව පෝඛං නමෝ සර්ව කර්තා නමෝ සර්ව හර්තා නමෝ ජෝග ජෝගේ නමෝ භෝග භෝගේ නමෝ සර්ව දයාලේ නමෝ සර්ව පාලේ චාචරී ශාන්ද දව ප්‍රසාන් අරූප අනූප ජුහා පුහා ලේඛ පේඛා නාම කාම අදේහ පේහා ජීත පීතය ධර්මාන දාන දර්පර්ග සර්ගය නිගලා නාද ජය ජාද ජනම වර්ණ පූත පර්ණයි අගංජ හැ බංජ චූජ ජංජ මීගර් වීග දන්ද බන්ද ඉන්ද්‍ර පූජ සූජ කාල ජාල අල්ලාහ ජාය නන්ත මහන්තයි අලීක නර ශ්‍රීක නර ලම්බ සම්බ ගම ජම පූත සූත අලෝක සූක කර්ම පරම අජීත පීත බාගර මානන දාන නීක පරේකයි පුජංග ප්‍රයාත ඡන්ද නමෝ සර්ව මාන්නේ සමාධි තින දානේ නමෝ දේව දේවේ හැබේ කිය බේවේ නමෝ කාල කාලේ නමෝ සර්ව පාලේ නමෝ සර්ව ගෞණේ නමෝ සර්ව පාවණේ අනංගී අනාථේ නරසංගී පාද නරසංගී පරමාථේ නමෝ පාන පානේ නමෝ මාන මානේ නමෝ චන්ද්‍ර චන්ද්‍රේ නමෝ පාන පානේ නමෝ ගීත ගීතේ නමෝ දාන තානේ නමෝ නිරත නිරතේ නමෝ නාද නාදේ නමෝ පාන පානේ නමෝ බාද බාදේ අනංගී අනාමේ සමාධි ස්වරූපේ පරපංගී පරමාථේ සමාධි ප්‍රබුද්ධේ ගලංකං විනානේ ගලංකේ ස්වරූපේ නමෝ රාජ රාජේ සුරං පරම රූපේ නමෝ යෝග යෝගේ සුරං පරම සදේ නමෝ සස්ත්‍ර බාණේ නමෝ වස්ත්‍ර බාණේ නමෝ පරම ගාතා නමෝ ලෝක මාතා බේකිය පරමිය භෝගිය භුතේ නමෝ යෝග යෝගේ සුරං පරම ජෝතේ නමෝ නිත නරයණේ ක්‍රූර කර්මේ නමෝ ප්‍රේත ප්‍රේත දේවේ සුධර්මේ නමෝ රෝග හර්තා නමෝ රාග රූපේ නමෝ ශාශාංග නමෝ භූප භූපේ නමෝ දාන දාන්නේ නමෝ මාන මානේ නමෝ රෝග රෝගේ නමෝ සංඝ ශනානේ නමෝ මන්ත්‍ර මන්ත්‍රං නමෝ යන්ත්‍ර යන්ත්‍රං නමෝ ඓෂ්ඨේ ඓෂ්ඨේ නමෝ දාන්ත්‍ර දාන්ත්‍රං සදා සච්චිදානන්ද සර්වං ප්‍රණාසී නූපේ රූපේ සමාතුලනේ වාසී සදා සිද්ධතා බුද්ධතා බිරද කර්තා අදෝ උර්ධර්ධංග ගංගෝ ඝර්තා පාරං පරම් පරමේශ්වරං ප්‍රෝෂපාලං සදා සර්වදා සද්දදාතා දයාලං නශේධිය බේධිය නාමං කාමං සමස්තු පරාජී සමස්තස්තු දානං තේරා ජෝර්ජා ජරිෂං ජරේහ සලේහ පීදා වේය ප්‍රභු අජුව දේශ බේසහයි පුජංග ප්‍රයාති ශම්භ අගාධය බාධය නන්දේ ස්වරූපේ නමෝ සර්වමාන්‍ය සමාධි දින දාන්නේ නමස්තුං නරනාථේ නමස්තුං බ්‍රහ්මාසේ නමස්තුං ගංජේ නමස්තුං අපංජේ නමස්තුං කාලේ නමස්තුං පාලේ නමෝ සර්වදේශේ නමෝ සර්වබේසේ නමෝ රාජ රාජේ නමෝ සාජ සාජේ නමෝ සාසාහේ නමෝ මහමාහේ නමෝ ගීත ගීතේ නමෝ ප්‍රීත ප්‍රීතේ නමෝ රෝග රෝගේ නමෝ සෝග සෝගේ නමෝ සර්ව රෝගේ නමෝ සර්වබ්‍යෝගේ නමෝ නමෝ සර්ව ජීතං නමෝ සර්ව බීතං නමෝ සර්ව ඥානං නමෝ පරම දානං නමෝ සර්ව චන්ද්‍රං නමෝ සර්ව තන්ත්‍රං නමෝ සර්ව මන්ත්‍රං නමෝ සර්ව ජාන්ත්‍රං නමෝ සර්ව දෘෂ්ටං නමෝ සර්ව කරේසං නමෝ සර්ව රංගේ දර්පංගී අනංගේ නමෝ ජීව ජීවං නමෝ බීජ බීජේ අකිජේ අබිජේ සමාතං ප්‍රසජේ
कृपालं स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धिं निवासी चरपट शांत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अजल भोगे अजल राजे अटल साजे अखल धर्मं लख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत प्रसाद आद रूपन आद मूर्त जन पुरख पार सर्व मंत्र मान देव बेवाद उदार सर्व बालक सर्व काल को सर्व गोपन काल जतर तत्र विराज ही अवधू सर्व प्रसाद नाम ठाम न जा जा करु ब्रंग न रेख आद पुरख दार मूर्त अजो नाद शेख देश और न पेश जा कर रूप रंग न रूप रेख न राग नाम ठाम न जात जा कर रूप रंग न रेख आद पुरख दार मूर्त जो नाद शेख देश और न पेश जा कर रूप रेख न राग जतर तत्र दिशा विशा हुई फैले अनुराग नाम काम बिहीन बेग तामु न जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन केन्द्र रूप अनेक खेल खेला खेल खेल न अंत को बर एक देव पेव न जानी जे बेदर क देव रूप रंग न जात बासु जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चकर बकर फिर चतर जाको मानी प्रतीन लोक चौदह के बिखय जग जापी जय जाप आद देवन आद मूर्त सप सब जय साप परम रूप पनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सूरज स्वयं वर्ण भंजनहार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सु भरम रह तबूतल कपेश अंग राग न रंग जाक जात पात न नाम गर्भ गंजन दोष भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमी कानसत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंग हीन अपंग नात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व गायक सर्व गोवृत पार सर्वगंधा सर्वहंता सर्व दयान पेख सर्व शास्त्र न जाने जय रूप रंग हर देख परम वेद प्राण जा कह नेत भागत नैत कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवई बहु चित मद पार शांत धव प्रसाद गुणगान उदार महिमा पार आसन पंग कुमार अंग अनुभव प्रकाश निशनाश आजन बाह शान राजन राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्राण इंद्र बालन बालु रंकान रंक कालन कालु अनुपूत अंग अपंग गात्मित पार गुणगान उदार मुन गण प्रणाम निरपैने काम आत दुत पर जांड मित गात अखंड अलिस्त कर्म अदृष्ट धर्म सर्वा पर आण दंड बाढ़ चाचरी छंद तव प्रसाद गोविंदे मकंदे उदारे पारे हरियंग हरियंग नरनामे कामे भुजंग प्रयात छंद चतर जकर करता चतर जकर दाने चतर जकर जाने चतर जकर वर्ती चतर जकर भरती चतर जकर पाले चतर जकर काले चतर जकर पासे चतर जकर वासे चतर जकर माने चतर जकर दाने जाजरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितरय न कर्मंग न गाय जन्मंग अजाई न चित्र न मित्र परयं पवित्रय प्रतिशा दिशा दृशा कृषा भगवती छंद प्रसाद गाथते क्या सुज देश है क्या पिज बेस है क्या कंज कर्म है क्या पंज परम है क्या पिज लोक है क्या दत्त सुख है क्या अवधूत वर्ण है क्या विभूत कर्ण है कि राजंग प्रभाएं के धर्म तुझाए क्या शोक वर्ण है कि सर्वा वर्ण है कि जगतंग कृतियां कि शतरंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपम रूप है कि आदो देव है कि आप अपेव है कि चतरंग विहीन है कि कह दीन है के रोजी रजा कर ही मैं रहा कह के पाक बेअब हैं के गैबल गैब हैं के अफुल गुना है के शाह शाह के कारण कुनिंद है के रोजी दहंद है के राज करीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र भवन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र
ਕਾਜ ਜਾਏਗੇ, ਸਰਵਤਰ ਰਾਜ ਜਾਏਗੇ, ਸਰਵਤਰ ਸੁਖ ਹੈਗੇ, ਸਰਵਤਰ ਭੁੱਖ ਹੈਗੇ, ਸਰਵਤਰ ਦਰਾਣ ਆਏਗੇ, ਸਰਵਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਏਗੇ, ਸਰਵਤਰ ਦੇਸ ਆਏਗੇ, ਸਰਵਤਰ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਮਾਨੇ ਆਏ ਸਦੈਵ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਆਏਗੇ, ਸਰਵਤਰ ਜਾਪੇ ਆਏਗੇ, ਸਰਵਤਰ ਥਾਪੇ ਆਏਗੇ, ਸਰਵਤਰ ਭਾਨ ਆਏਗੇ, ਸਰਵਤਰ ਮਨ ਆਏਗੇ, ਸਰਵਤਰ ਇੰਦਰ ਆਏਗੇ, ਸਰਵਤਰ ਚੰਦਰ ਆਏ ਕੇ ਸਰਵੰ ਕਲੀਮੈ ਕਿ ਪਰਮੰ ਫੇਮੈ ਕਿ ਅਗਲੋ ਲਾਮੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕਿ ਉਸਨੋ ਵਜੂ ਤਮਾਮ ਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਰ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀਖਤ ਮਦਾਮੈ ਗਨੀਵਲ ਸਗਸਤਾ ਗਰੀਬਲ ਬਰਸਤਾ ਹੈ ਬਲੰਦਲ ਮਗਾਨਾ ਜਮੀਨੋਲ ਜਮਾਨਾ ਹੈ ਤਮੀਜਲ ਤਮਾਮੈ ਰਜੋਲ ਨਦਾਨਾ ਹੈ ਹਰੀਫਲ ਜੀਮੈ ਰਜਾਗ ਜਗੀਨਾ ਨੇਕਲ ਤਰੰਗਾ ਬੇਦਾ ਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਵਲ ਖਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੋਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਮੁਗਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਸੁਯੋਗ ਸੁਧਾ ਹੈ ਸੰਯੋਗਤ ਸੁਧਾ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਰੂਪਾ ਬੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਵਸਾਜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦਾ ਵਲ ਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਵਾਸ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗਾਉਸ ਅਨੂਪ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾਸ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਤ੍ਰਿਪਾਦੀ ਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰਗ ਸਰਭਾਗੇ ਸਰਵਾ ਨਰਾਗੇ ਤ੍ਰਿਪੁ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਜੈ ਸੁਦੈਕ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੋਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੋਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਭੰਗ ਹੈ ਨਾਂਗਾ ਬੇਖਾ ਲੇਖਾ ਪਰਮਾ ਕਰਮਾ ਨਾਦ ਜੁਗਾਦਾ ਜੈ ਪੈ ਪੂਦਾ ਦੂਦਾ ਨਾ ਸਭਦਾ ਸਦੰਦ ਬੰਦ ਹੈ ਭਗਦਾ ਵਿਰਗਦਾ ਨਾ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਅਲਿਖ ਹੈ ਦੇਖਾ ਲੇਖਾ ਬੇਖਾ ਟਾਹ ਗਾਇ ਸਭ ਕੰਮ ਹੈ ਨੀਲਾ ਨਾਦ ਹੈ ਤਸਨ ਤਜਾਦ ਅਜਾਦ ਹੈ ਚਰਪੁਟ ਛੰਦ ਸਭ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵੰਗ ਹੰਤਾ ਸਰਵੰਗ ਗੰਤਾ ਸਰਵੰਗ ਖਿਆਤਾ ਸਰਵੰਗ ਗਿਆਤਾ ਸਰਵੰਗ ਹਰਤਾ ਸਰਵੰਗ ਕਰਤਾ ਸਰਵੰਗ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਵੰਗ ਤ੍ਰਾਣੰ ਸਰਵੰਗ ਕਰਮੰ ਸਰਵੰਗ ਕਰਮੰ ਸਰਵੰਗ ਜੁਗਤਾ ਸਰਵੰਗ ਮੁਕਤਾ ਪ੍ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਭੰਗੰ ਬੁੱਧੇ ਪਰਮਾਤਮ ਪਰਮਾਤੇ ਸਦਾ ਸਰਵ ਸਾਥੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਧ ਬਪੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਦਰਗਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਭੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਨਾ ਪੋਤਰਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾ ਸਦਰਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾ ਦਾਤਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਨਾ ਪਾਤਾ ਨਿਰਸਾਕੰ ਸ੍ਰੀ ਕਹੇ ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜੈ ਜਾਏ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ ਜਹਰ ਜੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਰਹਜੂਰ ਹੈ ਮੇਸਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਾਤ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰੀਮਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮਲ ਖਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਫੁਲ ਸਗਨ ਹੈ ਰਾਸ ਲਿਪਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮਾਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜਾਇ ਕਰੀਮ ਹੈ

आजान भाई कैस दाहो अंकार याद कथनी नाद खलखंड ख्याल गुरु भर अकाल कर कर प्रणाम जे चरण नाम अंश जगाता जिजनबात अनचंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अनठट पारा डीठ धर्म अत डीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना संत प्रसाद करणालय है कालय है खलखंडन है मैं मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है द्रद के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंगवर है सर्वंकर है सर्व सर्व पास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मांड से है कलखंड से परते पर है करुणा कर है जब जब है थपा थपा है कृता कृत है मृत अमृत है अमृत अमृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृत अमृत है जब कृत अमृत अमृत है निर्नायक है कलकायक है विश्वम पर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है पव पंजन है अरगंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्म है आत्म वास है जस के जस है भुजंग प्रयाद संग नमो नरक नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह धाम सिंह शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पौज पौजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादिंगे कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो भांग भंगे भंगी स्वरूपे अनंगीय नामे दृभंगी दृकाले अनंगीय कामे एक अचरी संग अजय अलय अपय अभय पुव जुवनाश गास गंज बंज लख बख गल दयाल लेख पेख नाम काम गाह नाथे प्रमाथे जोनिय मोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे कर्मंग परमंग गंजे लेखे भुजंग प्रयात छंद नमास्तल प्रणामे समास्तल प्रणासे गंजलो नामे समास्तल निवासे निरकामंग बभूते समास्तल स्वरूपे गुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बभूते सदा सचदानंद सदरंग प्रणासी गणिमलक निंदा समास्तल निवासी जय बभूते जय गणिमय हरियंग करियंग करीम रेमय चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजम पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते चतर चक्र भारती चतर चक्र भुगते सुजम पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जीओ तव प्रसाद सवैये को अंकार सतगुर प्रसाद तव प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं शराब किसुद समूह सदान के देख प्रयोग कर जो जति के सूर सुरार्दन सुद सदा देखो संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखे प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपाऊ ते कृति विनय कृति के माते मतंग जर जर संग अनूप तंग सुरंग सवारी कोट तुरंग कुरंग से गुदत पौन के गौन को जात नवारी भारी भजन के भू बलिवद न्याव सीसना जात बिचारी एते पाए तो काम पै भूप दंत को नंग पाए पदारी जीत फिरै सब देश दसान को बाजत ढोल मृदंग नगारी गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हंसत है हजराज हजारी भूत भवैख भगवान के बुबद कौन गने नहीं जात विचारी सरी पद सरी भगवान भजे बिनंत को अंत के दाम सुधारी तीर्थ नान दयादमदान सुरंजम नेम अनेक वसेख है वेद पुराण देव कुरान जमीन जवान सुगान कपेख है पौन आहार जदिय दारू सब सब चार हजार के देख है सरी पद सरी भगवान कृपा बिन सरी पद सरी भगवान
ਸਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਨ ਭੂਪਤ ਏਕ ਰਤੀ ਬਨੇਕ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਭਾਅ ਦੁਰੰਤ ਸੁਭਾਅ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਆਦਰ ਜਾਣਦ ਲੈਂਗੇ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਬਾਂਖਾ ਲੈਣਾ ਹਲਾਏਂਗੇ ਦੋਰ ਹਰੀਨ ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਬਨੰਗਰ ਮਾਨ ਮਲਾਏਂਗੇ ਸਰੀ ਪਦ ਸਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵੈਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚਲਾਏਂਗੇ ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰੂ ਅਵਚਾਰੇ ਸਰ ਕਿ ਧਾਰ ਪਛਈਆ ਤੋਰਤ ਦੇਸ ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ ਗੜੇ ਗੜਾਨ ਕੋ ਤੋੜ ਨਹਾਰ ਸੁਬਤਨੀ ਜਗ ਚਾਰ ਰਵਈਆ ਦਾਨ ਵਧੇ ਫਰੰਦ ਸਾਚਰ ਅਭੂਤ ਵਿਖ ਭਗਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਸਲਮੈਂ ਪਾਲੀ ਫਲ ਮੈਂ ਸਭ ਸਾਬ ਜਪੈਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ ਸਦਰ ਸਭੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਪੈਂਗੇ ਮਾਨਵਿੰਦਰ ਵਿਜਿੰਦਰ ਨਿਰਾਦ ਬੋਝ ਜਵੰਤਰ ਲੋਕੋ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਤ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸੁ ਅੰਬਰ ਸਾਜ ਭਰਾਏਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਨ ਸਜੀ ਪਦ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਪਾਸ ਭਰਾਏਂਗੇ ਜੇ ਨਾਰ ਸਰੀ ਪਦ ਕੇ ਪਰਸੈ ਪਾਗ ਤੇ ਨਰ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰਾਏਂਗੇ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਹਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਨਲੋ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਬਾਸ ਕਿਉ ਬਖਿਆਨ ਸੁ ਬੈਠ ਗਏ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੁ ਬੈਸ ਬਤਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਗਾਹੂ ਲੈ ਬਾਨ ਪੂਜ ਕਰੋ ਸਿਰ ਗਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਕਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ਗਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਪਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ ਕਹੂ ਬਦਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਾਸ ਕਹੂ ਮਰਦਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਤਾਇਓ ਗੁਰ ਕਰਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਾਗੋ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ।

पूर करया और जो सब ही जागो श्री भगवान को भेद न पायो सतनाम श्री वाहिगुरु जी ओ। पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो ब्रत पारा। हमरे दोष्ट सब तुम कावहु आप हाथ दे मोहे बचावहु सुखी वसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करे सब बैरन को आज संगरे पूर्ण होए मारी आसा दूर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई वर न ध्याऊ जो वर जाऊ तुम से पाऊ सेवक सिख हमारे दारी है जन चन सदर हमारे मारी है। आप हाथ है मुझे भरे आए मरण कल का त्रास भरे आए हु जो सदा हमारे बचा सरिया तो जू करे रचा राख रे हम रख नहारी। साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमह पुरी चतुर्दश कंता गाल पाए ब्रह्मा बवतरा गाल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जो की शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जश्न बजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझे हमारा। नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवार।

हे श्री राम हेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सुवर मन ना बसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया कहे नानक हे शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर सों चतलाया हे नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी हर बिन वर्ण देखो कोई हर बिन वर्ण देखो कोई नदरी हर निहालया हे वे संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी पूजया जा वेखा हर एक है हर बिन वर्ण कोई कहे नानक ने तरंद से सतगुर मिलया इंद बदल टोई हे श्रवणो मेरे हो साचा सुनदयां नूं पठाए साचा सुनदयां नूं पठाए श्री लाए सुनो सत बाणी जत सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस माणी साचा लख बडाणी दा की गत

आत्म जिने सकल वसदां कै जा का सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग्रह। जन के चरण बसै मेरे ही अरे संग पनीता देही जन की तूर दे

करे पर गास पर मन की पाई के दिखना वै धर्म पाल्या जग के हिस्से पड़े छोड़ वक्त कहे जिस पाल्या भाव न पर सुनिया मोह काल है जो जिस चले चलाए हार गए कितने बुला लिया।

ताज थोड़ी अपने घोट घोट है कोई पसम थोड़ी सिखाया बड़ा हुआ सुंदा चल संगल सच सिखाया पहले खा कर सुखाया।

हर सजन लता राम राजे कंचन काया कोटगढ़ हर हर सुखा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन सुरपा।

0: परियां सबे गोपियां पहल कम गोपाल कहने कौन कौन के संकर चल सुंदरता संगीत धरती माल संबल सुचल जा नाम कुछ ज्ञान होनी खाए गया जनता मोहला पहला
1: वायन से ले लक्ष्मण गुर पैर हलायन शेरे शेरे उड़ उड़ रावा चाहता पाए देखे लोग हसे रोटियां कारण पूरे साल

सभी कर्म है पार, बोलू चरखा चकी चक फल बरोले बहुत कलम से, लाचू मा धनिया अनगाह

0: जाता पाया जाता
1: पाउड़ी बिन सतगुर के ने ना पाया बिन सतगुर के ने ना पाया सतगुर आप रखी उन पर प्रकट आप सुनाया सतगुर ने एक सदा मुक्त है जिन तो बोह चुकाया उत्तम विचार है जी सत्य क्यों जितना आया जब भी उनका

0: बटा पाया बटा पाया बटा पाया।
1: और इसे किसी तो किसी से सिखाया ओनी मंदे पैर ना रखी कर तो कृत धर्म कमाया। दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया

कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच कहे जिन सचो सच बताया सच गवाया सच पाया जिन फिर सच बताया।

0: पौड़ी सच्चा साहिब एक जिन सचो सच करताया
1: जिनका हृदय सच बताया मूर्ख सच ना जाने मन जन्म गवाया दुनिया का आया दुनिया

0: पर पर बेड़ी पाई है पर पर कटिए खात पर ये देते बस बस पर ये देते मात पर ये देते आजा पर ये देते साथ नानक लेखे एक गल और होने चकना चाक भला पहला
1: लेख लिख पड़े आते ता कड़िया बहुत तीर्थ भया से तो लव्या बहुत पे किया दे ही दुख दिया सहवे दिया अपना किया अन्न न खाया साग दो आया बहुत दुख पाया

लाल निंदा करी पाठ को मेरा समस्त सुनाइए फल से दे हो पाइए सारी कमाइए हो गए पूर्ण सुख्या पूर्ण सुना दी पाइए मत छोड़ी देव गवाइए देव गवाइए देव गवा

साथी कष्ट से आया ये मजे मजे साथी सुख देखी जब उपाया दिखा को सुख आया दिखा दिखाया जिसे तुझ आप उठाया।

योग सप्तम ज्ञान सप्तम वेद सप्तम ब्राह्मण खत्री सप्तम धूल सप्तम शूद्र सप्तम प्राचित सर्व सप्तम एक सप्तम के को जाने से

सिमरन सब कछ दूजै प्रभ कै सिमरन नाही जमत्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाय अमृत नाम अमृत माहे समाय प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरै से तनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभ को सिमरै से जन परवान प्रभ को सिमरै से पुर प्रदान प्रभ को सिमरै से बे मोहताजे प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा बनासी सिमरन ते लागे जन आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभ को सिमरै से परपकार प्रभ को सिमरै तिन सर्ब लहारी प्रभ को सिमरै से मुख सुहावै प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरै तिन अंध कने प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे संत कृपा ते अंध न जाग नानक सिमरन पूरे पाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कब होना चोर है प्रभ कै सिमरन हर गुणबानी प्रभ कै सिमरन सह समानी प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बेगासन प्रभ कै सिमरन अनंत तिनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार सिमरै से जन जिनको प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया।

हर सिमरन नीचे चौं कुंड जाते हर सिमरन तारी सब करना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की ओ सगला कारा हर सिमरन में आप निंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन।

नौखंड पृथ्वी सरचर जीवै महा उदास पिसर सीवै अगन महे होम तरान कनक असर है वर कुंदा न्योली कर्म करे बवासन जैन मार्ग संजम अत साधन निमख निमख कर सीर कटावै तौ पीहु मैं मैल न जावै हर के नाम सम

गोविंद भजन बिन तिल नहीं मने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोला सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मंगाए।

तुमरी कृपा में सूख कनेर, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरा सूत्र तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत नित तुम ही जानी, नानक दा

मन के स्मृतियों आलसी की जाए। जय प्रसाद असर हस्ते असवारी मन किस प्रभ को कभू ना बिसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तना रात रोए प्रभ अपने मन जिन तेरी मन बंत बनाई उठ बैठ सच सहते आई। सहते आए जो एक अलख है इहा उहा नान तेरी रखे। जय प्रसाद करे बन बहुता मन आठ है कर किसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहार किस प्रभ को साथ साथ चिताई। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप तू प्रभ सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी नीकी जात तू प्रभ सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कहै। जय प्रसाद सुने कन्ना जय प्रसाद देख बिस्माद। जय प्रसाद दुल अमृत रसना जय प्रसाद सुख।

जयप्रसाद जय सुनाव ऐसा प्रत्याग अवर कतला गो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद को प्रगट संसार किस प्रभु को मूल

प्रसाद सब की गप हो नानक जात जप जप सोय आप जपाए जपै सुनाओ आप गवाओ सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते हो प्रकाश प्रभु दया ते कमल विलास प्रभ से प्रसन्न

प्रदीप साध के संग मुख उजल होत साध संग मन सगली खोत साध के संग मिटाय अभिमान साध के संग प्रगटै सो ज्ञान साध के संग बुझा कर नेरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक उपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभु महेश मान साध का संग अगोचर मिले साध का संग सदा प्रफुल्ल

साध के संग मनोहर पैन साध के संग न कतहु तार साध संग अस्तित मन पावन साध के संग माया तुपिन साध संग नानक तब सो प्रसन्न।

साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान कम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नहीं तखका दर्शन पेट तो होत निहाल साध के संग कलूख धराय साध के संग नरक पर हराय साध के संग सहला साध संग विचरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न व्यर्थ जाव पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरा साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाम साध

साधु कै संग कट कट दीठा साध संग पया गया कारी साध संग कट पई हमारी साध कै संग

दसना परस मन में पीत निरंजन दर्स पर तिरिया रूप न पिख नेत्र साध की टहल संगहित करन सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद दिखिया पर हरे मन की बासना मनते तरह इंद्री जित पंच दोखते रहते नानक कोट मदे को

ज्ञान कबहु तट तीर्थ स्नान कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहु कीट हस्त तंग हो दिया अनक जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो संगी दिखा।

करे अनक जतन कर आत्म निंदर वह हर दर गए कहो कैसे गवे आप कहो जो पला कहावे तुसे तुलाई निकट नया सर्ब तीरे जा का मन होए कहो नानक ताके निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कश होए तब इसको सुख नाही कोई जब ये जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी नीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मो मगन संगमा तब लग धर्मरा

बिना संतोष नहीं पूरा जाए स्वप्न मनोरथ पूछे सबका जाए नाम रंग सर्व सुख होए वडपागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा।

संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसी का नहीं मित, संत के दुखी को दान लग, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख न सुख से तरे, संत के दुखी को नहीं था नान संत पावे ता लय मिलाए, संत का दुखी अद भी के टूटे, संत का दुखी कित काज न पहुंचे, संत के दुखी को उद्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी

सिमर सिमर सिमर कर सोए नानक दिगन लागे कोए उस मन में कनिकार कर मन मेरे सब

जिन प्रभ जाता सो सुभावंत सगल संसार उतरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगले उदारन प्रभ के सेवक दुख विसारन आपे मेल लए कृपाल गुर का शब्द जपे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे।

सर्व कला पर पूर प्रभ बिरथा जननहार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलहार।

जिस होवै सू पर संस्तदी अबनासी ब्रह्मन में राख मान की तू प्रीत्या चित्ते पर नहीं किस कोई सब निरंतर एको सोय आपे दीना आपे दाना घर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद साध तेरी

आनंद रूप मंगल सरजा कै सर्व को सुनिया करता कह राज में राज जोग में जोगी तप में तपीसर ग्रंथ में भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया झांकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म कै जाने पूते सगल परोई

ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक का मन प्रतीत, ठाकर के सेवक के निर्मल रीत, ठाकर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम कह रंग, सेवक को प्रभु पालनहारा, सेवक की राखी निंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु तारे, नानक सो सेवक सा सा समार, अपने जन का परदाता कह, अपने सेवक की सर पर रख, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपा, अपने सेवक की आप रख ताकि गल में कोई न लख, प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक जज प्रताया, नीति कीरी में कल रख पश्म कर लस्तर को रख, जिसका सास न काट दिया ताको राखत देकर हाथ, मांस जब

नाम सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन ताने मन तन नाम नाम समाने उठ बैठ सूरत नाम कौ नानक जन कै सद काम बोलो जस जे बाजन रात प्रभु अपने जन की दात करे भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने स्यों रह समाए जो हुआ हो वसो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचान किसकी महिमा कौन बखानो किसका गुण का एक न जानो आठ पहर प्रभ से हजूर है कौन नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओ चले मन तन अपना तिन जन दे जन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व को का दाता किसकी शरण सर्व सुपावे किसके दर्श सब पाप मिटावे अवर सियान को सगली साड़।

सिमरत सासत वेद विचार हर की भगत करो मन लाए मन बंसत नानक फल पाए संग न चालस तेरा तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत नीर

पानी प्रभु की सबको बोले आप अडोल ना कबू डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइय गुण अमोल सर्व जोत में।

कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिसे आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्वभूत आप

मन अंतर की उतरे चिंद आज अंत त्यागो तरंग संत जना के तूर मन मंग आप छोड़ बिनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर लिहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज

सावधान एकाग्र चित सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो हो निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण हो प्रदान पुरख प्रगट सब लोय सब के ऊंचे

कट सिमरन राम को ओ नर मुक्ता जान। ते नर हर अंतर नहीं नानक सचि मान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाए मान हुए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी ने आज रात्रि दे दीवान की हाजरी भर के सतगुरु की इलाही गुरबाणी विचों कीर्तन की समाप्ति से वो पावन पवित्र बचन सरवण किए ने जिन्हां भगत कबीर साहब जी ने ऐस संसार जो मनुख पूर्व गति प्राप्त कर जाते हैं उन्होंने जीवन इन शब्दों श्लोकों में निरूपण किया। साहबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी, इन्हों का शहीदी जोड़ मेला सरहंद की धरती से फतेहगढ़ साहब जी के स्थान से बड़े श्रद्धा ये भावना नाल मनाया जा रहा। लखां की तादाद में देश के वक् वक् कोनों तो लोग उन्हां बाबिआं नूं नमस्कार करन लई उन्हां दे चरणां की धूड़ परछन लई आउंदे ने। देखो जिसे सच्चे सुचे परमेश्वर के चरणों में जुड़े हुए बाबा जोरावर सिंह

औड़ी अपने आप साजो अपने रचो ना हों गुजर साजिया करासन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस्दी करें पसाओ तू जानो सब सैंधी लैसें।

0: वस्मात् संयोगवता वस्मात् संयोग वस्मात् वस्मात् भोग वस्मात् सेवक वस्मात् सलाह वस्मात् योजड़ वस्मात् रहा वस्मात् नेड़े वस्मात् दूर वस्मात् देखे आजा दूर देख उड़ान रहा वस्मात् नान को जन पूरे पाग भला पहला
1: कुदरत दिशा कुदरत सुनिए कुदरत बहुत विस्तार कुदरत पातालियां काशी कुदरत सर्वाकार

0: महला पहला पड़ पड़ गड्डी लटिए पड़ पड़ भरिए साथ पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड्डिए साथ पढ़िए जेते बस बस पढ़िए जेते मात पढ़िए जेती यार जा पढ़िए जेते साथ नानक लेके एक दाल और हमें चखना चाहत मंदा पहला
1: लेख लेख पढ़िया ते ताकड़िया वो तीर्थ भगा ते तो लवे वो पे किया जी दुख दिया सो विजी अपना किया अन्न न खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस न पहरे अहन से कह रहे मोर विदुता के जाके गुर बिनसुता पागो पे ताना अपना किया कमाना वाल वाल खाई फिर जाई पाई मूर्खन दे पत गवाई बिन नावे किस लाए न पाई रहे बवानी बड़ी मसानी अंदर जाने फिर पछतानी

पौड़ी तुरे पलाने पौन वे घर रंगी हर मसवारिया कोठे मंडप माड़िया ला बैठे कर बसारिया चीज करने वाले भाव ने हर बुझण नहीं हारिया पर फिर मैं सिखाया।

0: मन उतारे धोए महला पहला। मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़, अखी सूतक देखना परत्रे पर धन रूप, कन्नी सूतक कन पै लाए तवारी खाहे। नानक हंसा आदमी बद्धे जमपुर जाए महला पहला।
1: सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए, जमण मरना हुक्म है भावे आवे जाए। खाना पीना पवित्र है दिता नक समाही, नानक जिनी सतगुर पूजिया।

पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खल में पाई और मत सुनो अगली बजे पूजा खाई खल में करे बराबरी खे फिर गया तंदर पाई वजह गवाई अगला मुहिम पाना खाए जिसका दिता खावना जिस कही सबाश ना।

0: तेरी बड़ाई कोई नाम न जाने मेरा। वाहिगुरु जी ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह, श्री गुरु जी साहिब वाहि जी की पातशाही गुरुआई
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ

जन के चरण वस मेरा ही अर संग पुनीता देही जन की तूर देह कृपा निद नानक कै सुख एही जन के चरण वस है मेरा ही अर संग पुनीता देही

0: आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की निघी गोदंद साह संघ जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद किया जाता साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जिन्हों की मेहर सदका सू अज के दीवाना दाए दी भांति विभाग प्राप्त हो जी। धन्यवाद किया जाता है ज्ञानी लोकल कीर्तनी अथे का, जिन्हों ने कीर्तन द्वारा समूह संगत हर जसना जुड़े है जी। आईया हैं समूह संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हफ्ताबारी दवाना दिया हाजरियां भर के अपने जीवन सफरे किए हैं जी। अगले ऐतवार को दीवाना जब तीन आसा दीवाना होगी जी। समूह संगतों को बेनती है समय से गुरु घर पुज के सेवा से जुड़ के अपने जीवन सफले करो जी। गुरु के लंगर तैयार हैं, समूह संगतों ने शक्तियों की कृपालता करनी जी। हूँ दीवाना की समाप्ति है जी, सेवादार बेनती देख बताई जाएगी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

मेर करो त्रिन ते मोहे जाए, ग्रीबन वाज ना दूसर दोस्तो। मेर तो पाव सुमेर पर्वत, त्रिन तो पाव तीला, हे परमात्मा मैनू त्रिन तीले नू सुमेर पर्वत दी न्याई विशाल मजबूत गुणा नाल भरपूर कर दियो। आप जिया तो बिना होर मैनू कोई गरीब नवाज नजर नहीं आता।